डेली, तो बड़ा ही टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं। हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ? तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए। अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव मेनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata and other Upanishads. So definitely we are open university, we are open school. Of course it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swami Ashwaranpuriji Maharaj, who gave us

Good. Thank you. Thank you and me hunyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the Vidyarthi turn to the don't go close to the फिर चेहरा नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आजा खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की

निर्मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ही खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदो। श्रीदीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।

0: ॐ शांति शांति शांति।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

0: जय श्री श्री देवेश्वरमा देवा की जय श्री श्री अलकपुरी समा देवा की जय हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु मां मंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय
1: सत्य सनातन धर्म की।

देवादिदेवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुरी जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आप सब भक्तों की। अरण वफ पार्वती।

की जय। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय। मलयवतार आत्मा पुरुष लकपुरी जी सितपीत परंपरा की जय। देवति देव देवेश्वर स्वयंभुदेव पुरुष महादेव की जय। आरति देव बोलिए श्री दीपनर भगवान महाप्रभु जी की जय। श्री श्री हिंदू धर्म सम्राट परमं श्री स्वामी माधवानंद पूज्य भगवान की जय। श्री श्री सर्वभूमिश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमं श्री स्वामी महेश्वरानंद पूज्य भगवान की जय हो।

इति श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ओम रिरि श्रीदाता गौरीपुत्र महागणपतिदेव की जय। ओम बुढ़िये शंकर भोलेनाथ की जय। विश्व

ओम्बुलिये श्री दीपनरे भगवान की जय। विश्व गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी योगानंद जी की जय हो।

जय श्री नारायण भगवान की जय होलि गुरु जी भगवान की जय स्वामी महेश्वरानंद जी सर्वभूम जगत गुरु योगी राज की जय साब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।